0: आप भागो प्यारे लाल जी,
1: माँ जी
0: जल्दी भागो,
1: माँ जी माँ जी
0: माँ जी
1: माँ जी माँ जी माँ जी,
0: माफ कीजिएगा माँ जी, माफ कीजिएगा।
2: कोई बात नहीं बेटे, गलती मेरी ही थी, बगैर देखे रास्ता पार कर रही थी। दो दिन से भूखी प्यासी बेटे को ढूंढ रही हूँ, चक्कर सा आ गया बेटे।
0: बेटे को ढूंढ रही थी?
2: हाँ।
0: कौन है आपका बेटा, क्या नाम है उसका?
2: ये देख बेटे, विशाल नाम है इसका।
0: ये आपका बेटा है?
2: हाँ बेटे।
3: वाह वाह वाह, माँ जी फिर तो गाड़ी देख कर सामने आई हैं आप।
0: अरे माँ जी यूँ समझिए आपका बेटा मिल गया।
2: हाँ
0: प्यारेलाल जी, आप माँ जी को लेकर घर चलिए, मैं अभी अभी वकील बाबू को लेकर आता हूँ।
1: आइए
0: चलिए चलिए चलिए माँ जी चलिए,
1: आइए
0: संभाल के ले जाना प्यारेलाल जी।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: सिकंदर गाड़ी से दूर हट जाए, इसमें टाइम मत।

0: डॉक्टर साहब ये
1: सिकंदर साहब आप यहीं रहिए, हो सकता है आपके और खून की जरूरत पड़े।
0: तो लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे खून का एक कतरा ले लीजिए, लेकिन विशाल की जान बचा लीजिए।
1: हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा।
0: मुझे पाल चाहिए, शहर का कोना कोना छान मारो, लेकिन किसी भी हालत पाल को लेकर आओ।
2: अबे बस बस, ज्यादा मत हंस। एक काम तो पूरा हो गया, अभी दूसरा बाकी है। पता है जेडी आने वाला है, सिकंदर ने उसके 15 लाख का माल पकड़वा दिया, इसका उसे क्या जवाब दोगे?
1: सिकंदर,
0: पहले सिकंदर से बच जा, फिर जेडी की सोचना।